हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग सुप्रभात आप सभी प्यारे दोस्तों को आप सभी कैसे हैं दोस्तों यस मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और कल रात की नींद भी आप सभी की अच्छी गई होगी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज के हमारे हिंदी के सबसे पहले खंड पे और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइज़ोल FM 100.7 दोस्तों और आप सभी मेरे साथ दोबारा जुड़ जाइए हंसी मजाक प्यार भरी बातें करने के लिए दोस्तों यस और आज मैं दोबारा आप सभी का साथ दूंगी और आप सभी को अच्छे अच्छे हिंदी के गीत सुनाऊंगी दोस्तों ठीक है और आज की सुबह आप सभी ने बहुत ही अच्छी वाली खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ शुरुआत की होगी यस अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है तो आप कर लीजिए कल रात का मतलब कल के झगड़े को भूल जाइए और अच्छे से प्यार के साथ आप सभी एक दूसरे के साथ समय बिताइए और हम चाहते हैं कि दोस्तों इस तरह आप सभी का समय यूं ही बहुत ही प्यार से बीता रहे तो आइए कल की नाराजगी को भूल जाइए ठीक है तो चलिए हम प्यार की तरफ चलते हैं ठीक है यस तो सुनते हैं अभिजीत और अलका याग्निक जी की आवाज़ में गाया गीत चलते चलते मेरी तरफ से इस खंड का सबसे पहला गीत आप सभी के नाम

प्यार के लिए चार पल कम नहीं थे दोस्तों। यस, बहुत ही खूबसूरत गीत अलका याग्निक जी की आवाज़ में गाया गीत आप सभी को पसंद आए होंगे। और यस, जब भी मैं ये गीत सुनती हूँ ना दोस्तों, तो मुझे ये एहसास होता है कि जब दो दिल मिलते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही गहरा संबंध प्यार रहता है, लेकिन लेकिन वो चाहते थे कि उनका जो प्यार का संबंध है ज़िंदगी भर सालों तक चले, लेकिन बीच में क्या हो जाता है, एक उसे मतलब कोई एक उसे छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। जिसे हम प्यार करते हैं ना दोस्तों, उन्हें मरते दम तक प्यार करना चाहिए और उनके लिए हमेशा ईमानदारी के साथ उनसे बेवफाई नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं दोस्तों? यस, बस आज रियली तो बस आपके लिए दुआ करती है कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही प्यार और खुशियाँ से भरता रहे दोस्तों। तो सभी को हक है मोहब्बत करने के लिए, लेकिन वो इंसान जो बहुत ही खुश नसीब होते हैं ना, उन्हें ही प्यार मिलता है, ठीक है? यस, तो चलिए फिलहाल मैं अगला गीत सुनाना चाहूँगी, जुदाई, मेरी तरफ से अरिजीत सिंह और रेखा भारद्वाज की आवाज़ में गाया गीत आप सभी के नाम।

वेल मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा जुदाई गीत सुन के? और यस, बहुत ही खूबसूरत गीत दोस्तों, आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। यस, आज के इस बहुत ही खूबसूरत सुबह में पता नहीं आपकी दोस्त आरजे वियली का मूड खराब तो नहीं है, लेकिन मुझे ना हंसने का मन ही नहीं है। ठीक है, और एक बात बताऊं दोस्तों, हमने अभी जो गीत सुना था ना, जुदाई गीत, मतलब जब हम जुदा होते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये मतलब ये जुदाई ना अक्सर मतलब उन भावों को ना हमारे सामने लाती है, जैसे कि याद आना, तड़पना उनके लिए, उदासी, अकेलापन, पुराने पलों को याद करना, कभी कभी उम्मीद की फिर मतलब उम्मीद होती है कि फिर हमारी मुलाकात हो जाए, है ना दोस्तों? यस, और एक बात ना आपसे कहना चाहती हूँ कि जुदाई प्यार की सबसे कठिन आजमाइश होती है। ठीक है, और जो इसे निभा लेना उसका प्यार और गहरा हो जाता है। ठीक है, ओम ज्यासु कसैला उमे यांग मिजो चोंगचुआन। यस, और सुबह के 9 बज गए हैं दोस्तों, और आप सभी के प्यार भरे संदेश की तरफ मैं चलना चाहूंगी। आप सभी उठ गए होंगे और आप अपने अपने कामों में जाने के लिए रेडी हो रहे होंगे, तैयारियां कर रहे होंगे, ब्रेकफास्ट खा रहे होंगे सुबह का। और हम चाहते हैं कि आप सभी अपने अपने काम अच्छे से करते रहे, बहुत ही अच्छे के साथ, अच्छे यस अच्छे तरीके के साथ। तो आइए, मैं चलना चाहूँगी आप सभी के प्यार भरे संदेश की तरफ। और इस खंड में सबसे पहला संदेश गागदे पा की तरफ से आया है। अर्जवियल नमस्ते इला प्रेले तुर्खा मिंग मोइते या ngũ साइला मोया मुनपुई ओमेगा सांगते या जेला जामा इतान कलाने अरोंती आ ओ कलोम लो तुके ओ चुआन आज भी है ही मिलो चार छा सक नचिन खान अथुई अरे देव अथुई अति देव उंगे अछियार छुआक सी लवा अरोंती आ ए ओले लेकिन आमो के आया छियार थियाम आज यो फेली कंसियार ती दोनिया ओ बी एल चोंग थू ओ चुआन RJ zama hian yes RJ bien namaste suprabhat rontia ole zam nang pole o chuan buinai playlist te iduti puinen intan le zoram remote fm zo oingai thatu te tan le ngak te pa bil ko clear pa enga uchipi a umatlo anga mission veng le usang ma mate nu pa mission veng thanga mi tan le par pari pu nguri sai lo te tan po o vl bu induti nuam ule rontia ole zam kalom lu tuke o chuan ang po tuang da win in ha ka lo thok ro o chuan min du sakna hi a hlu ka ti chuan kung te hian a jamo vl ngur da da nu khan a chuas ngur da da nu khan a chua san hlom ti kha i lo she ve to em te da ye che evan nei na Oh, kan chia chun zo mang. Vì bạn này na, ni a lâu in her chuang về đồn ta ấy. Oh, kan nui bè lâu kan tì la yin. Oh, kung tiên hi chan mi hi tì nui, mi tì nui hi chú. Oh, a thi mà ni mô. Yên hà bè mân. An giặc lâu ấy, trò giam kung tiên hi. Yên hà bè, yên hà bè mân y sinh đồn. Oh, kà lùm bùi lùi tùm chê. Ha ha แต่ว่าคล้องจากตักเจมโอ้คุ้งเตโอ้ฮิตเดอร์ดานจีที่ตรับเสียสันเดชอาณาเฮลุนโอเนลิขาเฮกูดมอร์นิ่งอาร์เจจีแก่กันสันเดชลิขาเฮโอ้อาบก็บีกูดมอร์นิ่งฮิตเดอร์ดานจีอาบเกสันเดชเกลียบขอบคุณชุกรียาโอ้โอเมก้าสังเตียนชัดเจียงเตตุกเธอร์ดูสักนาทีใบนังฮิซองดูอมนาอินดูอมนาอินนะบอมเฟลเลอนาอินอาอุมพะเลอ
hitu ini siang long trisil na chanin hun man nuam le hey hitu oh boy nile gin ka hun at inuam do na nihi kaban lom hetiang message lum deu deu don oh kan dong ka da ni mo fm zo o ya kan duty lo hi chuan kan dong ngai lo ni mo chu bang chuan alom om oh kalom tak se to mega chuan pc jessica hian ajbl tuk thar chibe hun man nuam oh next ka in pathum ta na ron ti boka kan lom lu tuke chuan ming moi te hian valan namaste duty nuam le ron ti a kan lom lu tuke oh ming moi te आपके संदेश के लिए और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों आप सभी के प्यार भरे संदेश के लिए और बहुत ही खूबसूरत तारीफों के लिए दोस्तों और आपके संदेश के जरिए प्यार भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह हमारा प्यार हम मतलब मेरा और आपका प्यार दोस्तों इस FM ZO 100.7 पर हमेशा बरकरार रहे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला गीत मैं सुनाना चाहूँगी आप सभी को। क्या प्यार करोगे मुझसे, मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा मेरे साथ? क्या प्यार करोगे मुझसे? आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा सोनू निगम और अलका याग्निक जी की आवाज़ में गाया गीत है दोस्तों। और यस, अभी हमने प्यार के गीत सुने दोस्तों, और प्यार से मुझे ये एक बात याद आ रही है कि प्यार आपके हिसाब से प्यार का मतलब क्या है? मेरे हिसाब से प्यार का मतलब वो होता है जिसमें अपनापन, विश्वास, सम्मान और किसी की खुशी की परवाह शामिल होती है, ठीक है? यानी अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? कन लिमना आयिन मिदंगते लिमना खा ओ मिदंगते लिमना थिन खा मंगाइन चो अनि बोका तेरो मंगाइन डेफिनेशन हि चो तम तक आओम थेनी हेकिने दोस्तो यस। और या केवल प्रेमी प्रेमिका के बीच ही नहीं है, ठीक है? प्यार ना इनगाई जोंग ते चो अनिलाओ मो, बल्कि पेरेंट्स मो, हमारे दोस्त भाई बहन और मतलब सभी इंसानों के बीच हो सकता है, ठीक है? और मैं एक बात कहूँ प्यार की बात को लेकर, प्यार वो नहीं जो हर पल साथ रहने की जिद करे, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरे दोस्त विपिन भी अभी ऑफिस के लिए तैयार हो रहे होंगे और खाना खा रहे होंगे शायद, और यस ध्यान से सुनिएगा आप सभी। और कहते हैं कि प्यार वो नहीं जो हर पल साथ रहने की जिद करे, प्यार वो है जो दूर रहकर भी दिल से साथ रहे, ठीक है? भरोसा, सम्मान और अपनापन जहाँ हो वही रिश्ता सच्चे प्यार की पहचान बने। मैंने कहा था ना कि मेरे दोस्त विपिन हमें जरूर सुनेंगे। अभी अभी उनका संदेश आया, कवन डिंग टिक तक एम यस ऑफिस कल लाई दिन और ऑफिस कल दोन ते इन इंथिल ती पाते मिन लो गाय छछी ना छियान छ तक तक ते हो खा चटलम वाना ते पो तू ना ओ अना कल तुरिन मोटोरा ओ मोटोरा खले तो अंगा मोटोरा चुआंगा और ने आ इन बैडमिंटन आ इन खेल जवा हो मेक ते पो नि मे थया यस का हिंदी सेगमेंट ही इन लव एंजॉय थे एम एम आ कचियान ते हाउ कशिया थे चिना कलोम तक जेता यस। और मैं मिसो चो हिंकन सोई ले लोग चुवांग इन मंगाई नहीं ओ मानी चो इन गई तो इन गई तो लविन मिदंग ते लिम नत्ते पो ही मो गई तो वेखा कंती तुरनी मो यस। तो चलिए, जो अभी मैंने आपके लिए जो शायरी पेश की थी ना, वो आपने ध्यान से सुना या नहीं सुना? अगर यस, मैं एक बार दोबारा आप सभी के लिए कह देती हूँ कि प्यार वो नहीं जो हर पल साथ रहने की जिद करे, प्यार वो है जो दूर रहकर भी दिल के साथ रहे, भरोसा, सम्मान और अपनापन जहाँ हो वही रिश्ता सच्चे प्यार की पहचान बने, ठीक है? मंगाई नहीं अनकियांगा ओमरेंग पो अन्य खेरलावा मुनला आते ओम हाउ थे लोमा इला कनिन मंगाई न खा अदाई दोन अदाई दूर नी लोग नी दरो चान इन मंगाई न आहियान रेस्पेक्टे रिन ओम नते मो अंगे खत्यां जों जों खा ओम का चान मंगाई न तक तक अनि ती खा अचियांग छिन नी दरो इन मंगाई न को आहियान इन जा तोन नते ही अलो पोई मोले इन कश्या मो चाहिन ओम नो। तो चलिए फिलहाल गीत की तरफ बढ़ते हैं, हमारा समय भी बीता जा रहा है। तो आइए इस बहुत ही खूबसूरत सुबह में दोस्तों, मैं आपके दिन समय को बहुत ही अच्छे से बनाना चाहूंगी दोस्तों। तो आइए सुनते हैं पहले तो नहीं तुम ऐसे थे, मेरी तरफ से बहुत ही हार्ट टचिंग इमोशनल सॉन्ग गीत मेरी तरफ से आप सभी के लिए।

और दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को ये गीत ज़रूर पसंद आया होगा। इस गीत को ना शवर्णिका ने गाया है। बहुत ही खूबसूरत गीत है दोस्तों। आप अगर YouTube पर जाके सर्च करेंगे ना, इन्होंने बहुत ही खूबसूरत गीत गाए हैं। बहुत ढेर सारे गीत हैं इनके गाए हुए गीत शवर्णिका। बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी को भी पसंद आया का। और उन मतलब इनके गानों में से मुझे ये गीत, मतलब इनका इनका ये वाला गीत बहुत ही पसंद है। यस, पहले तो नहीं तुम ऐसे थे। ये गीत ना मुझे मतलब मेरे लिए ये गीत है, आपके लिए तो नहीं होगा। क्योंकि आप जिसे प्यार करते हैं वो तो आपके पास ही होगा ना। यस। और वेल दोस्तों, हमारा समय खत्म होने वाला है। और जाते जाते दोस्तों, एक बात कहना चाहूंगी कि प्यार भी एक मतलब आप मकनी तरह पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है जिंदगी से, लेकिन हमें जिंदगी से कोई कंप्लेन नहीं है। मुझे तो बस कंप्लेन होता ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो आप भी कंप्लेन मत रखिए जिंदगी से, नाराज मत होना किसी से, है कि नहीं? यस। और एक बात ना मैं कहना चाहूंगी कि प्यार में सबसे खूबसूरत चीज ना वो क्या है आप जानते हैं? प्यार में ना सबसे खूबसूरत चीज वो होता है जो है, जो हम का सफर होता है। ठीक है, प्यार में सबसे खूबसूरत चीज मैं से हम का सफर है। ठीक है, अगर मैं से अगर हम मतलब हम नो वी हमेशा हमारे प्यार के रिश्ते में होगा ना, तो आपका प्यार का रिश्ता ना दोस्तों उम्र भर जिंदगी भर चलता रहेगा। ठीक है, एक दूसरे को, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए। ठीक है, यस। और वैसे भी मंगाई न चुआ न दो थैया तरो चुभागिन ओम ज्याचू इन गाई जोंग ते चुंग चारिंग कसोई लवनिया ओ हे मोन शंग शंग आहियन कन हन कल छीना thil te kan han entry hei kan han mo chin ani chu khang thil kan mo teng te khan ril ru kha lo na chin ani chu mo nimin te po khan ka ho kong a khan zebra road da khan no pang e kum som vel khan anau pani mai chia an nia angkai o nge an man mo te khan e nge akai par dor dora ka enjoy ngam box si law a nu le pa nei box si law an mari kan en khan hey an khong ngai tha ka chong moi lo ni law se mo kai chubangin e mani ta ringot khan lo ngai to la ula in luan chwa the ang khan mi te tan khan lo luang chwa char char ula tro. Yes. Or waise bhi fm zo oi listeners ke सभी प्यारे श्रोताए के पास शायद बहुत ही दिल बड़ा वाला दिल है। इनका टू जोंग जोंग ते ही इन थी लुंग ही अलियान गती आ इन रिल रू गई तो अना तेपो अजाओ इन कशिया इन लिम ओ गन के मानी ते नियान है इन हे लिम दान ते ही इन थियाम चीन सी आ इन मेसेज रन थुन जोंग जोंग अचंग ही हन जो वांग चुआन इन ओम नमो न प्यांग खान मानी तान चौ नि लविन मिदंग ते तान पो खान लो लुआंग छुआक वे उला तेरो कंथे न जोन जो न खान। ठीक है, तो चलिए हमारा समय खत्म हो गया है। आरजे ऑफेली के साथ आप वेस्टर्न म्यूजिक सुनेंगे, तो तब तक के लिए दोस्तों मुझे इजाजत दीजिए। और यस, मैं वापस आऊंगी दोबारा अपने हिंदी के खंड को लेकर 10:40 पर। तब तक के लिए आरजे वीले को इजाजत दीजिए और दोस्तों मिलते हैं 10:40 पर। तो आरजे वील की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आपके समय के लिए। ठीक है।

हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मैं दोबारा स्वागत करती हूँ हिंदी के खंड पे। और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM जो 100.7 दोस्तों। और आपके साथ हिंदी के खंड पे फिर एक बार हाजिर है, जुड़ी है आप सभी की दोस्त RJ वेरी। और दोस्तों, आप सभी का समय कैसे बीत रहा है? हमें अपने संदेश के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। और हम चाहते हैं आपका समय, आपके काम अच्छे से चलता रहे यूं ही दोस्तों। और साढ़े 10 बज चुके हैं और हमारा समय इस खंड का पूरे 11:20 तक का है दोस्तों, ठीक है। इस 11:20 पर से आपकी दोस्त RJ ओफेली फिर से हाजिर होगी अपने वेस्टर्न म्यूजिक के साथ। तो आइए इस खंड में मेरे साथ RJ वेली के साथ हिंदी के गीतों को सुनकर मेरे साथ डूब जाइए दोस्तों। और हम दोबारा प्यार भरी बातें हम करेंगे। तो चलिए, अरिजीत सिंह की आवाज में गाया गीत तुझको मैं सुनाना चाहूंगी। इस खंड का सबसे पहला गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को मेरे साथ अरिजीत सिंह और यसुनिधि चौहान की आवाज़ में गाया गीत तुझको गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। यस, और आप सभी के प्यार भरे संदेशों का भी इंतज़ार है दोस्तों आप सभी का। यस, और फर्स्ट सेगमेंट आखान उंगूरी साइड आखान मैसेज मेरे थोड़ा कछियार मन तलावा कचोंग तुई लुटुक अवा खान कंचा लो कंगे ओ ओ उंगूरी साइलो हियन आज भी एक लोग आई था चिया चे आ इस आई टीर ले दूर का पार पारी पू आर के ए गा गा ते पा पीसी जिस पीसी आ पीसी मिंग मोई ते या वी कुंग ते या के गाई ते या पीसी जिस का ही गुड बॉय चोई ले रा मोया साइड लो दोंग पुया तेन उलुक तक अन लोग आई था कतान ओ इतान पो सियाल मंगतरा इन ओ रोंती आ आजे फिली बुलाते लव अलव वुई वेल नि मो ngori chu kati pat lu tuk o hun kha kan nei to si lawa chuan chuan pc jessica hian a je vi li lo let le ta mo next kha in pathum tan o ron ti le boka kan lom chin le mai rj van lal kan ri ru le ngai tuana te hi ron thon thei ila a in ang lo hlom ngodang a then chu a ho ve kho pang ti in good boy hian a ron thona ni etro mishing hi kan in ang lo bok ani kan mel point ang lo wa tro kan ngai tuana te kan thil du te chak zong te po ain ang lo ani mo nya। तो चलिए फिलहाल मैं गीत की तरफ चलना चाहूंगी। गीत मैं सुनाना चाहूंगी अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में गाएगी दोस्तों समझावा मेरी तरफ से। और हम उम्मीद है कि आप सभी का दिन अच्छे से चल रहा होगा दोस्तों। चलिए कोशिश करते हैं कि हम अपने इस समय को अच्छे से बिताएं। तो ये गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM 100.7 और हिंदी के खंड में। दोस्तों, यस, आप सभी अभी मेरे साथ हमारे साथ सुन रहे हैं, यस, आकाशवाणी आइजोल FM 100.7 में हिंदी के गीत। दोस्तों, ठीक है, और हिंदी के गीत के खंड में दोस्तों आप सभी को गीत सुना रही है और आप सभी से बातें कर रही है। दोस्तों, आप सभी के दो सर्जे वीएली, और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा समय इस खंड का 11:20 तक का है। दोस्तों, ठीक है, तो आइए, हमारे पास अभी पूरे समय बचे हैं, तो इस खंड में मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी वे कमलियां। यस, बहुत ही खूबसूरत गीत है दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको गीत जरूर पसंद आएगा। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आपके पास अगर कुछ कहना है हमसे आप कह सकते हैं, और मेरे पास तो बहुत ज़्यादा कहने को है, लेकिन मैं अपनी बात इस गीत के ज़रिए बताना चाहूँगी, जो है वे कमलियाँ, मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

तो दोस्तों, मेरे दिल की बात आप सभी ने गीत के ज़रिए सुन लिया होगा। तो यहाँ पर मैं गीत के सुनाने से पहले यह एल बी रेंथले की तरफ से संदेश आया है, वो मैं पढ़ना चाहूँगी। एल बी रेंथले यान आज भी अल वो इन मन नुआमले लौदिउति रेंग मैला दुथु साम लो मासे इहा ओम सी इनुई रिले इओ नलश्या थिचुआन कन हर होक जेल सी अनि हि नेक्स्ट खा इतान ले एफएम गाइ लतु जोंग जोंग दान ओ अरुंथिया ओले कलोम लु तुके ओ कथलाक जोंग जोंग ने एल बी वेन चुमो नुई मु दा ह्यान क चेंग बक लवनि ओ कनुई लेम लेम गाइ लवा कंदुई लेम लेम गाई लवा दिख तक सोई चुआन मासे वोइन चु नुई लम पंग आखा नकल तलत लाओ नी चुमो निमिन खान ए एंगे गथिल गथिल मुखा खांग एंगे नौ पंग उ नाउ पथुम गतिमया गई चुआन कपाशे चुआंग लाओ चु कखोंग आई तो पनी चुमो खोंग आई गोई गोई नु ले पाते अंगे अनगे इसक लाओ को दोन गे। तो चलिए फिलहाल हम बातें यूं ही करते रहेंगे, इसलिए आगे चलते हैं तुमसे बहुत ही खूबसूरत गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी को गीत, मेरे पेश किए गीत आप सभी को जरूर पसंद आ रहे होंगे। तो आइए हम जल्दी से अगले गीत की तरफ चलते हैं, और इस खंड में मैं आपसे ज़्यादा बातें नहीं करूँगी दोस्तों। बस कहना चाहूँगी कि आपके पास जो कुछ है ना, जो भी कुछ है दोस्तों, उससे ना उनकी ना देखभाल कीजिए, उन्हें प्यार दीजिए, उन्हें खेर कीजिए दोस्तों, ठीक है। और मतलब जो भी चीज़ है आपके पास, जो भी जैसे भी है, आप उन्हें प्यार कीजिए, उन्हें बेहद प्यार दीजिए दोस्तों, खेर कीजिए। यस, उन्हें हमेशा वो प्यार दीजिए जो किसी और कोई भी उन्हें ना दे सके, ऐसा वाला प्यार उन्हें दीजिए। तो चलिए खूबसूरत विशाल मिश्रा की आवाज़ में गाया गीत सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत गीत विशाल मिश्रा की आवाज में गाया गीत खूबसूरत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। और यस, खूबसूरत केवल बाहर से ही नहीं दोस्तों, अंदर से भी हमें खूबसूरत बनना चाहिए, ठीक है। अलंग लम पंग रिंग उत खान मेल छत्का कन मेल छा मो इन लो तिरिंगो तंगे थिन लूंग ते पोखा लो इन लो इंडोनिया ओ है कि नहीं दोस्तों। तो चलिए अब हम सुनते हैं अगला गीत, रितो रिबा और श्रेया घोषाल की आवाज में गाया गीत प्यार आता है मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को यस प्यार आता है। रितो रिबा और श्रेया घोषाल के आवाज़ में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। अब हम चलेंगे अगले गीत की तरफ और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी को नेहा कक्कर और अरिजीत सिंह के आवाज़ में गाया गीत तू ही यार मेरा। बहुत ही खूबसूरत गीत है दोस्तों, एंजॉय कीजिएगा इस गीत को सुनकर। और यस मेरे दोस्त सार्थव माना शायद कहीं जा रहे हैं सफर के लिए, खुलाएंगे मनी ओ अकल दोनी सलाग मिल लो थो ओ वीडियो मिल रो थो ना ट्वांग तका अकल थे ना दो सकना कंथाला नहीं देखा मिलो शायद सक्सेला। ठीक है, वो अपनी मंजिल सही सलामत पहुंचे हम यही दुआ करते हैं इस FM 100.7 से उनको यस कहना चाहते हैं दोस्तों यस। और चलिए अगले गीत की तरफ चलने से पहले यहाँ पर वाला साइलो हियन हेलो हेलो करण लूट मन वे चाहे प्ले लिस्ट अनल ले है मैं इंस्टा लमे यूट्यूब लम हियान ये लाइफ इन ती छुआ छिन कलो जायपुई वे वक वक अनिया हंदीजे ला अरुण ती लाइफ तक हिचु हेतिया कन पुआंग लाइ हिमो लाइफ हुन भी ही कन नई छिना हिंदी भी खी एवरी फ्राइडे मो फ्राइडे अप्यांग इन दार सोम छुन दार सोम पनिया कन नई छिन नि चुमो चुआन चुत्यांग बोक चुआन इंग्लिश मिजाउ तेपो लाइफ हुन खा कन ने थ्री नीता चुचु एफ बी लमा ने चुमो कन लाइफ जोक छिन एफ बी आ चुआन कन पेज खा ऑल इंडिया रेडियो आइजोल दिया खान मिलाउ थीर सक बे थ्री नंगा तिरो। तो चलिए फिलहाल मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं आपको अगला गीत सुनाना चाहूंगी और ये गीत होगा दोस्तों हमारे इस खंड का आखिरी गीत। यस, इस खंड का आखिरी गीत और आप सभी को मैं दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूंगी आप सभी का प्यार आप सभी के संदेश के लिए। दोस्तों आप इतने अच्छे हैं, हमें अपने कीमती वक्त निकाल के हमें संदेश भेजते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, और आपसे बातें करते हुए भी अच्छा लगता है। लेकिन आप भी अपने काम पर बिजी होते हैं, इसलिए हमेशा तो संदेश भेजना मुश्किल होता है, हम ये तो मतलब हम ये समझ सकते हैं, तो इसलिए कोई बात नहीं। लेकिन हमें ये उम्मीद है कि आप हमें चुपचाप अपने काम करने के साथ समय यस अपने काम करने के साथ साथ हमें सुनते भी हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल ये आखिरी गीत इस खंड का मेरी तरफ से आप सभी के नाम, और मिलते हैं दोस्तों 2:05 पर। ठीक है, ढेर सारी बातें करेंगे, ढेर सारे हिंदी के गीत हम सुनेंगे दोबारा। तो चलिए मेरी तरफ से ये आखिरी गीत आप सभी के नाम।

हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी को आरजे वीली की तरफ से गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर आप सभी प्यारे दोस्तों को। और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल एफएम जो 100.7 दोस्तों। और आपके साथ फिर एक बार हिंदी के खंड में जुड़ी है आप सभी की दोस्त आरजे वीली। और इस खंड में दोस्तों मैं आप सभी से प्यार भरी बातें करने के लिए फिर से दोबारा हाजिर हूं। और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी का दिन अच्छे से बीत रहा होगा और आप सभी को आप सभी को अच्छा लग रहा होगा अपने काम करने के साथ साथ हमें सुनकर दोस्तों। और आप सभी ने आरजे श्वाया के साथ उनके साथ आप सभी को गीत पसंद भी आए होंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको इस समय हिंदी के खंड पे आप सभी को दोबारा मेरे साथ अच्छा लगेगा दोस्तों। और मैं आप सभी के प्यार भरे संदेशों का इंतजार करूंगी और हमारा समय होगा पूरे 1:20 तक दोस्तों। ठीक है, तो आइए बहुत ही जोशों वाला शिल्पा राव के आवाज में गाया गीत मसकेर सुनते हैं इस खंड का। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं ये मेरी तरफ से इस खंड का सबसे पहला गीत आप सभी के नाम।

होंगे दोस्तों। यस, इस गीत को सुनकर आपके अंदर के सोए हुए मूड को शायद हमने ऑन कर लिया होगा। तो चलिए हमारे साथ इस तरह एंजॉय कीजिए दोस्तों, गीत को फील कीजिए, महसूस कीजिए दोस्तों। यस, आप सोचिए कि आप बिल्कुल मतलब बहुत ही खुशनसीब इंसान हैं, जो भी आपके पास है वो बहुत ही बेहतर है दोस्तों, और आप सबसे बेस्ट हो, बस ये ही सोचिए हमेशा, ठीक है। यस, तो चलिए यहाँ पर संदेश आया है के वालहियान अर्जेबियल जिलजामा और उचिपिया को मारो गोली, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जिलजामा और उचिपिया को दफा करो, मैं हूं ना। <भल्लो। laughs> मैं उनको गोली मारना नहीं चाहती और मैं उनको दफा भी नहीं करना चाहती, केवल अफसोस। लेकिन उनको गोली मारना भी जरूरत नहीं है और उनको दफा करने का भी जरूरत नहीं है, इसलिए आप भी वैसे ही हो जैसे मैं उनको मतलब मैं उनको जैसे आप प्यार करती हूँ, मैं भी आपको प्यार करती हूँ, केवल, ठीक है। और लदिन पुया ओ अंगाई रे हिरोन थोन बोग है पोई अफेल ही कती तई मबोक्सी आरजे प्रेले तुर्खा नंगमा तान ले लौंगाई थवे जोंग जोंग तान ले आरजे जोंग जोंग तान ले कछियान ते बेंग शंग शंगमी ते तान लदिन पुया फलकोन बेंग लाई एफ एम ngai sang एम एम टू ती नरोन थोन नी वान लोम ओम छीन तक एम ओ लदिन पुई चान। हितेंद्र दास जी लिखते हैं, गुड आफ्टरनून आरजे जी, नमस्कार। यस, आपको भी नमस्ते, गुड आफ्टरनून हितेंद्र दास जी, और हाउ आर यू, वेरी वेरी नाइस प्रोग्राम ऑफ हिंदी सॉन्ग शो। यस, थैंक यू सो मच हितेंद्र दास जी। आकाशवाणी आइजो स्टेशन एफ एम जो ऑय बैंड 100.7 मेगाहर्ट्ज, इफ पॉसिबल देन प्लीज प्ले द सॉन्ग ऑफ एक चुम्मा तू उधार। वाओ, ऐसा भी गाना है, मैंने तो कभी सुना नहीं हितेंद्र दास जी, अगर हमारे प्लेलिस्ट में होंगे तो हम जरूर सुनेंगे, ठीक है। और आज बहुत गर्म है, वेरी हॉट टुडे, काम नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा गर्म है, इसलिए डेडिकेटेड ऑल आरजेस एंड ऑल स्टाफ मेंबर्स ऑफ आकाशवाणी आइजो स्टेशन परिवार, माय फ्रेंड्स आर मिनल अमल रेके रेके वेलिक दुर्गेश जी। यस, थैंक यू सो मच हितेंद्र दास जी, आपको मुझे इस तरह संदेश भेजने के लिए। आपको तो हिंदी बिल्कुल आती है, तो मुझे हिंदी के सेगमेंट पर, हिंदी के खंड पर आप मुझे क्यों इंग्लिश से मैसेज संदेश भेजते हैं हितेंद्र दास जी? मैंने आपको पहले भी कहा था, आप हिंदी जानते ही है और संदेश तो भेजना जानते ही होंगे, तो इसलिए हमसे हिंदी से बातें करिए ना। इंग्लिश से अगर आपको बातें करनी है तो वेस्टर्न म्यूजिक के सेगमेंट पर आपकी दो सार जे ऑफिली तो है ही आपके पास, तो फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया हितेंद्र दास जी आपके संदेश के लिए, और मैं आपका जो फरमाइश की थे हमारी प्लेलिस्ट में होगा तो हम जरूर सुनेंगे, ठीक है हितेंद्र दास जी। और इस तरह एफ एम जो ओय को प्यार देने के लिए, सुनने के लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूंगी। और तो चलिए फिलहाल मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों गीत की तरफ चलते हैं। अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को, बहुत ही खूबसूरत गीत है दोस्तों, तो चलिए ये गीत है। मैं आपको बताऊंगी हाँ बाद में, फिलहाल गीत को सुनते हैं फिर हम चलेंगे आपके तरफ, ठीक है।

तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही दोस्तों, आप सभी को ये गीत सुनकर आप सभी को अच्छा लगा होगा शायद, यस। और इस गीत को सुनकर आपके अंदर के सोए हुए मूड को मैंने जगा लिया होगा शायद। तो आप जहां पर भी हैं दोस्तों, एंजॉय कीजिए। लाइफ है ना दोस्तों, एंजॉय करने का है, ठीक है। आप सभी एंजॉय कीजिए अपने लाइफ पे और खुश रहिए दोस्तों, ठीक है। हमेशा खुश रहिए और अच्छे से, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मतलब मैंने कहा कि आपसे कि आप एंजॉय करिए, लाइफ है एंजॉय करने का, लेकिन हमें एंजॉय उस तरीके से करना चाहिए जो हमें बाद में रिग्रेट ना करना पड़े, ठीक है। इन चीर ले तुर खचान एंजॉय खेर खांग आई लो ओ एंजॉय रो उगती मासे खोवेजु एंजॉय टूर मासे नकिना इन चीर ले नान खचान एंजॉय लो टूर इन शे थ्याम तरो अले तो चलिए मा वाला ह्यान Hello, hello, RJ, good afternoon, Arondia. Hello, duty, he's one, no, he can titlang, and he is segment, luka, ngay lut, he can ailo, Arondia. Tak tak mo, haha. Kavan oilo, oh, minti nui nani ron soy me, may ni kaka shivek. Kung te yan, tuna trangare lo te, nua, ngurdua de te un, ngurdua de te.

别无脑子，你说了你没读了。哎哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈Nui deo vak vak la, acha nui deo vak vak la, bing atlay next ka, itali aje zong zong ta no ron tani. Ya nui hitu noam katia maze, nui rem hitu harbe bokani. Nizi la boga ba nui shep o. Nikina nui za tlak no kishil beng zo o. Kangai toa za po yan ka nui la za.在马斯那巴彦迪尔多巴格尔黑地拉卡布马布马拉马库邦 DRCC 啊 BRCC 丹楼康维里昂跟楼长啊，俺个奥伦迪啊哎，跟楼总破蛋哦，黑米拉跟个唱首好那样啊，个 play make 跟俺唱首破蛋啊，对喽，米龙学啥啥路哦，转在马彦。Hey, I'm Hansei M. Arjavil, namaste. Good afternoon, Arontia. Yes, oh, Zam nang po on, hati tok chate yem. Zwan, wain su, twa vik, twa tien ka ngay lao nga dro. Arjavil, idiw di pui di pahni segment a Zwan, ngô ringin ka ngay thalia mai te ya. Masi hea om ta, ani buai, buai le ma,Se i segment a chuan ngoy ring Zami iron tay pa ngangin ka tiyar niya o Ma se i segment a chuan ngoy ring a ngay thak chu A uy om ta ani chu Next song om har ke bin lam ami vi kung te a Ler thaka Ler thaka A chu po at thak dan po chu mo zam Hey, king chili yang chi ka O King chili yang a thak Ler thakTel Lavin ke ba la ngak te pa. Vikung te a lir tha ka Tel Lavin ke ba la ngak te a. Pa bil ko tlir uchi pi a pa e nga. Par pari pu nguri sai lao mo ya. Mun pui pi si Jessica la din pui a Falcon vieng lai. Pu zai ma Hitendra Das Assam le Das Ramlo ti an tan sia vum thurin kan la. Nang e o tin a puang tu o.Ngay nao bay tak nay tu may mea la vi na ron tia ni. Ngoam thay. Bad bad shukriya zam. Aapki sandesh ke liye, thikke? Ke wala hiyan RJVL meri taraf dekho. Ham saath milkar zindagi bhar ke din bitayenge. Ench. तो चलिए इसी खुशी के लिए सोना कितना सोना है सुनते हैं और इस गीत के बाद महासेना पा का फरमाइश की दिल तो पागल है हम सुनेंगे ठीक है तो चलिए उके वाला और उके वाला मैसेज और लोमनान मतलब उनके प्यार भरे संदेश के कारण के लिए ये गीत मैं सुनाना चाहूंगी तो आप सभी भी मेरे साथ नाचिएगा ठीक है एंजॉय कीजिएगा आरजेवीएल मेरी तरफ देखो हम साथ मिलकर जिंदगी भर के दिन बिताएंगे वाओ कितना खूबसूरत मैसेज है तो चलिए मिंग मोहितिया की तरफ से भी वन गुड आफ्टरनून कहकर हमें संदेश भेजा है तो चलिए आप सभी के लिए ये गीत मेरी तरफ से

वेल दोस्तों, ये था लता मंगेशकर जी और उदित नारायण अलका याग्निक जी की आवाज में गाया गीत. लता मंगेशकर और उदित नारायण जी की आवाज में गाया गीत दिल तो पागल है. माँ से नपा की तरफ से फरमाइश गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे. यस, शायद बाहर बहुत ही जोरों शोरों से बारिश हो रही है ना. जामरो आसूरतिरो अरे हूं हूं मैं चुआन ओ इन नमना तिखान रुआसुर एम ओ असुर चुआन लौतम हुल उला अले के वाल हियान अर्जवील कथोन कथोन दान सिखा जा मचुआन श्री चियांग से चुआन ला मिन थन सक मिया लवंग दिरो कैसे लाउले अथन सक जेल थवांग चे जा मथि चु फेल लो मरिल रु जावा कोंग ते हियान जिल जा मा अंति वे सेक ला हि आ अदिन मुंदिर थोन सिया से देर सी लाउ गुरदुआ द नुन अन इन छ अन इन अ छवा सन अचिना चुआन कन जोकर ला जा मा चन तुर क दोन गम लो रोन ति वेल सनी कन इ चु ज लो मा से न पा हियान आर जे कन वलोम एम मिपरियत ला इन कन लौंगाई था अनिया ओ नेक्स्ट खा खबुंग ब्रांच वाईएमए वाइस प्रेसिडेंट तान कलो थंग ले हा ले ओ रोन ति बुक अनि ए वन लोम ओम एम एम मिपरियत ला इन मिन लौंगाई था कन वन लोम कन लोम तक जेट चान हुन नोम देउ इन लो मन थेना दु सकना कन हान चेउनी ओ चान जामा हियान आरजेवीएलवी कुंग लेर थक खा अलथिनगे निजान अन खो निजान अन कोम छक लेमिन निजान अन कोम छक लेमिन इन अन होल तेलिन कशिया कशेसिया अल अलदाग जौ जौ मै कति वीएल रो असुर न समय रोन त्या निजा महिया न्या अरि हुम हुम इन कशिया ए आरजे श्वाया ह्यान अनि लौ रो असुर लौ ए सिरिय निका त्या मासे निलो अब इन अब अच्छा कमो लरो लेट ले लवा है मासे रातु ओ असुर दिखा कर रिंग रिंग अनि तेरो जाम चौले दिन पो यहियान आज ये इप्ले ले तुर खा नंग मातान ले लोंगाई थवे जोंग जोंग तान ओ ले आज ये जोंग जोंग तान ले कच्छ आंटे वेंग शंग शंग अमिते तान ले पार पारी पू

an kung te ata ming moi te a ke wala tui tui kwala mi te tan la din bu ya fa kon vien fm ngai sang mm tu di inaron thona ban lom om tak emo la din bu ya po chuan Hitender Das ji ka sandesh आया है उन्होंने लिखा है आरजे जी हिंदी आती है हिंदी में लिखना अच्छा नहीं लगता है मैं आपने बोला है तो अभी हिंदी से एसएमएस करूंगा हिंदी सेगमेंट में इसलिए तो आप कीजिए आपको हिंदी आती है ना और मुझे भी हिंदी आती है तो हिंदी के सेगमेंट पर हिंदी के खंड पर हिंदी से मैसेज देना तो बनता है ना यस तो चलिए लेकिन आप इंग्लिश से संदेश भेजना बंद मत करना वो भी मतलब वेस्टर्न म्यूजिक सुनाने वाले हमारे इंग्लिश आरजे के लिए ठीक है भेजना जरूर भेजना तो चलिए अब आप सभी को सुनाना चाहूंगी इस बारिश के मौसम में मुझसे दोस्ती करोगे दोस्तों आशा भोसले अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में गाएगी चलिए सुनते हैं जल्दी से मेरी तरफ से आप सभी के नाम

वेल दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरे साथ हिंदी के गीतों को सुनकर अच्छा लग रहा होगा। तो आइए, इस खंड के लिए आप सभी से विदा लेने का समय आ चुका है। और जाम कुंगते अन मैसेज लो टाइप में का छुआ संदे यंग ओ अ मैसेज फॉर शेयर डोला वंग ओ ngur dua ta pa ngur dua ta pa tireng mai ama ka le angai to na zong zong han ngur dua ta pa om renga enge chan ni don ni ngur dua ta nu kha a star de un yang tro zam ai enge chari to lo me yang kung te ya message ran thon hi ka kung te ya om hi chuan nuam thin ani a nuina tur hi atam em em a chuwangin kan nui le ang हम हंसेंगे दोबारा दोस्तों। यस, इस बारिश के मौसम में बारिश वाला गीत मैं सुनाना चाहूंगी, इस खंड का आखिरी गीत। मुझे बारिश पसंद है और मुझको बारिश में तुम। यस, रोहन प्रीत और नेहा कक्कर की आवाज में गाया गीत मैं सुनाना चाहूंगी दोस्तों। और मैं वापस आऊंगी अपने हिंदी के खंड को लेकर दोबारा 2:05 पर पूरे 2:30 तक आपका साथ देने के लिए, आपसे हंसी मजाक और प्यार भरी बातें करने के लिए। आरजे वीर के दोस्तों, इजाजत दीजिए और मुझे

हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग नहीं दोस्तों, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर आप सभी प्यारे दोस्तों को आरजे वेली की तरफ से फिर एक बार। और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM ओ 100.7, और आपके साथ जुड़ी है आप सभी की दोस्त आरजे वेली दोस्तों। यस, और आप सभी के प्यार भरे संदेशों का दोस्तों इंतजार रहेगा। यस, और यस, आप सभी का दिन कैसे बीत रहा है हमें जानना है दोस्तों। आप हमें जरूर बताइएगा कि आपका समय कैसे चल रहा है। और और दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा आपके दोस्त आरजे श्वाया के साथ उनके साथ मिजो गीत सुनकर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने जरूर अच्छे से वक्त बिताया होगा उनके साथ। तो चलिए हमारे साथ भी और वक्त बिताने के लिए आ जाइए हमारे साथ, हम आपका इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सुनाना चाहूंगी हंसाते हो रुलाते हो अलका याग्निक और अभिजीत चक्रवर्ती की आवाज में गाया गीत। इस खंड का सबसे पहला गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

यस दोस्तों, इस तरह एक दूसरे को सताना और सताने के बाद एक दूसरे को मनाना प्यार में कितना अच्छा लगता है ना दोस्तों? यस, हंसाते हो रुलाते हो, बहुत ही खूबसूरत सा गीत, बहुत ही प्यार भरा गीत आप सभी को यस जरूर पसंद आया होगा मेरे दोस्तों। तो आइए आगे की तरफ चलते हैं और अगला गीत मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी और गीत है दोस्तों तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। यस, बहुत ही खूबसूरत गीत है। जब आप इस गीत को सुनेंगे ना तो आपको भी जरूर पसंद आएगा, ठीक है? यस, तो चलिए सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में गाया गीत मेरी तरफ से आप सभी के लिए।

वेल दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में गाया गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। यस, तो प्यार ही ऐसी चीज है कि हमें इतना खुश कर देते हैं कि क्या बताएं आपको। प्यार वो नहीं जो हर पल साथ रहने की जिद करे, प्यार वो है जो दूर है कर भी दिल से दिल के साथ रहे, है ना दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं अगले गीत की तरफ। अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को, फाल्गुनी पथक की आवाज में गाया गीत मैंने पायल है छनकाए। यस, और ये गीत भी ना जब बारिश आती है तो मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपको भी जरूर पसंद आएगा ये इस गीत को सुनकर। और कुंगते हिनाजे मोवेल जिलजा मखा एंगतिन एंगतिन इरोंती आ एंगतिन गे इरोंती आ हे अब अरोन बुई न समय आयम लाउलुतुक ओ जामहियान RJBL luang takin hoang che himdam taka chung chung khwa nun ompuin chung khwa nun ompuin hual him che sila ithil ti kong tin renga muingil zel theinan it's head ze kong tin it's ze kong tin renga pathian mal somin pathian mal somrim nam nun nei ze tur पंडु सकना कहलाने से नेक्स्ट सॉन्ग इतान समरोंतिया। बहुत बहुत शुक्रिया साम आपके प्यार भरे संदेश के लिए। स्वान कुंते अनिलाओ के वाला ही नर्जेवियल कुंते अनिल जा मही नो कंति कंति चन रियाओ मई एंटिन ने ती चु एंटिन ने ती एंटिन ने ती ची नियंग मासे कसोम न ओ मोई तक एरो शिल्मिया सु ओ अले। तो चलिए फिलहाल आप सभी के प्यार भरे संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह आप मेरे साथ मतलब मुझसे बातें करते रहिए, अच्छा लगता है दोस्तों। तो आइए सुनते हैं मैंने पायल है छनकाए इस खंड का दूसरा गीत मेरी तरफ से, फाल्गुनी पथक की आवाज़ में गाएंगे आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को फाल्गुनी पथक की आवाज में गाया गीत मैंने पायल है छनकाए आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे दोस्तों। यस, आप सभी से अलविदा कहने का समय आने वाला है दोस्तों। यस, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जब आपके संदेश आते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वालते कुंगते ते जामते जामा कुंगते या ये दोस्त ना मेरे इतने करीब हो चुके हैं कि मेरे जिंदगी से जुड़ चुके हैं। ठीक है, जामते कुंगते ते वो मीन्स हे कशिंग ना ह्यान हे अनलियान तो दिना नि सुमो मा नचंग तो खान तुन थेंग इन एफ एम जो ओय करोन ड्यूटी अप्यांग ह्यान एंगे हुन मिन लाउ मान पुई छी ना कलशरेंग ग थे हिल थे लाउ। यस, इसी तरह हमारे बीते हुए पल को ना दोस्तों हम याद करते हैं और यस कल थे हिल थे लाउ बुक्सू माना उजीबिया ओ आइजोला लो पोस्ट टूम खान ओ आई ओ आइजोल रन पोस्ट मसबेर तुमे ओ थिंकलांगा टा रन पोस्ट खान मिलाउट लो देंग ते खा कल शेरेगा कतियांग ते ले जामा मानिया कल शेमिया लो जामा पोखा और हमें बहुत याद आती है ना दोस्तों उन स्वीट मेमोरीज के यादों में हम कभी कभी खो जाते हैं ना दोस्तों, और खो जाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अच्छी अच्छी यादों को याद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने माँ के साथ जो बिताए हुए पल ना कनूते नैना हूं कनमन तेंग तपोखा गई तो अचान और लूंगे ले वो छिनने तिरऊ। यस, तो आपको आप भी मेरी तरह अपनी माँ को याद करते होंगे, अपने दोस्तों को याद करते होंगे, है ना दोस्तों। तो चलिए, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, मैं इस खंड का दूसरा गीत सुनाना चाहूंगी। तो चलिए दोस्तों, मेरी तरफ से ये प्यारा सा गीत आप सभी के नाम।

वेल, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये गीत पूरा नहीं सुना पाऊंगी क्योंकि हमारे पास अभी वक्त नहीं है आप सभी को पूरा गीत सुनाना, तो हमारा समय खत्म होने वाला है. हमारे पास केवल 2 मिनट बचे हैं दोस्तों, तो आइए मैं आप सभी को अलविदा कहना चाहूंगी. और जाते जाते दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि आप सभी को मुझे प्यार भेजने के लिए अपने संदेश के जरिए मैं उनके लिए उस चीज के लिए मैं आप सभी से शुक्रिया अदा कहना चाहूंगी. और जाते जाते एक बात आप सभी से कहना चाहूंगी कि आप सभी कहीं पर भी जाएंगे, कहीं पर भी रहेंगे, आप सभी अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना दोस्तों, ठीक है. मैं नहीं चाहती कि आप दुख यस आपको कोई भी दुखी ना आए दोस्तों. तो आइए इस खंड का आखिरी गीत मैं आप सभी इसको सुनाना चाहूंगी. बहुत ही खूबसूरत गीत है, कुछ कुछ होता है सैड वाला. तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, चलिए हम दोबारा मिलते हैं. हमारी मुलाकात होगी जल्दी से, पर मैं नहीं कह पाऊंगी कब मुलाकात होगी. तो तब तक के लिए दोस्तों, आप सभी आरजेवी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार. तो मेरी तरफ से बाय बाय, टेक केयर, बाय.

0: Hei hi, Akashvani Aizol, FM Zoi Zapoin, Pasari Achanga Puan Chua, Ani. Vo in July ni som pali, sang hi som ni paruk, thole ni ta na kan hun voi khat na, kan zau ta reng mai. Min ngai thatu te zong zong chunga lom thu kan suya, kan hun voi ni na hi tai dali le chan via kan chan le do na. Min lo ngai thale chau turin kan som cha u. Hun man pui tu chau hi lerwat fili, RG of fili kan ni a, control room engineer duty hi ke van lel ruata, Ani. In the vine, ni man nuam vek ule.
1: ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नागरिकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में हैं। इससे पहले अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलडमर मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका होर्मुज जलडमर मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावों को खारिज किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान का दोबारा समर्थन किया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्ध लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली

आकाशवाणी आइजोक एफएम 100.7 पर आप सभी का दोस्तों हम फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं और मैं हूं आपकी आरजे मंसूम फागी। आपने अभी आरजे जोदीनी के साथ अपना वक्त बिताया था और 5:30 बजे तक हमारे साथ अपने वक्त बिताने के लिए आप तैयार हो जाइए। और सबसे पहले हम सुनेंगे तुम मिले मूवी का टाइटल ट्रैक सॉन्ग है, सुनते हैं तुम मिले।

आप सभी तुम मिले मूवी का टाइटल ट्रैक सॉन्ग सुन रहे हैं और यहाँ आपके एसएमएस की ओर चलते हैं, ठीक है। अगले गीत की ओर जाने से पहले जी लज्जामा का मैसेज मिला है, इन्होंने लिखा है अर्जुन सोमप्लाव नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार। गुड इवनिंग जानी ड्यूटी नॉर्मल कलोम एम एम ए स्वानी। हितेंद्र दास जी ने भी भेजा है, हेलो सर कैसे हैं आप, आशा करते हैं कि आप ठीक हैं। गुड आफ्टरनून और मैं मोहित अहियान सोमप्लांग नमस्ते ड्यूटी नॉर्मल रंथन बोगा कलोम एम एम ए नमस्ते नमस्ते। तो हम अगले गीत की ओर जाएंगे, ये गुंडे मूवी का गीत है तूने मारी एंट्रियां।

शिया ये गुंडे मूवी का गीत है। यहाँ मिनाल अहमद का हमें मैसेज मिला है, बहुत ही खूबसूरत लाइन सिंधे ने लिखी है। हाय गुड आफ्टरनून आजे, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू। आशा करते हैं कि आप भी ठीक है ना। मन ना हो तो मना कर देना, हाँ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि खत्म होने से अच्छा है शुरू ही ना हो। काफी सैड है। एनीवेज बहुत अच्छा लगा हमें। अगले गीत की ओर जाएंगे, ये हम मृणाल अहमद के लिए डेडिकेट करना चाहेंगे। बैंग बैंग।

आप सभी बैम बैम मूवी का गीत मेरी सुन रहे हैं और यहाँ मीनार जी का हम फिर से पढ़ लेते हैं। मैसेज मिला है, इन्होंने लिखा है किसी भी गीत में शामिल कर लेना और मेरे दोस्तों को भी शामिल कर लेना। अजय मैम आप कैसे हैं जी? हम ठीक है, आशा है आप अच्छे होंगे। मिनमोहित हितेंद्र दास कुम सुबा दुर्गेश नागमपुरे हमी मानबा लिंदो के लिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अगला गीत जो हम सुनने वाले हैं ये गब्बर इज़ बैक मूवी का गीत है, तेरी मेरी कहानी।

तेरी मेरी कहानी गब्बरिस बैग मूवी का गीत था और हम अगले गीत की ओर जाएंगे। सुनने वाले हैं गजेंद्र वर्मा की आवाज में, ये है तेरा घाटा।

आप सभी गजेंद्र वर्मा की आवाज में सुन रहे हैं तेरा घाटा। और अगला गीत जो है ये एतबार मूवी का गीत है नान हजारों का। और दोस्तों

आकाशवाणी आइजो के एफएम 100.7 पर आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं हूं आपकी आरजे मसूम तलवांगी। दोस्तों, आपने अभी आरजे रिंकू के साथ अपना वक्त बिताया था और ये समय आता है हिंदी फिल्मी गीत सुनने का। और इस खंड पर आप हिंदी के फिल्मी गीत सुनने वाले हैं और शुरू करेंगे दामिनी मूवी के गीत के साथ, और ये है जब से तुम्हें देखा।

आप सभी दामिनी मूवी का गीत सुन रहे हैं, जब से देखा है तुम्हें। और यहाँ हितेंद्र राशि का भी मैसेज मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद मैसेज करने के लिए। और अगला गीत जो हम सुनने वाले हैं ये कसूर मूवी का गीत है, कितनी बेचैन होके।

भी कसूर मूवी का गीत सुन रहे हैं। यहाँ मीनार अहमद का मैसेज मिला है, इन्होंने लिखा है, गुड इवनिंग मैम, दोस्ती में पैसों की कोई कीमत नहीं है, यहाँ तो 5 रुपए के वेफर का पैकेट भी सब मिलकर खाते हैं। ऑसम है आपका प्लेलिस्ट आज, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, डेडिकेटेड रहेगा मेरे दोस्तों के लिए, कोई भी गाने में शामिल कीजिए, सभी गाना अच्छा है। मिनमोथे हितेंद्र दास कौनसुबा दुर्गेश नगनपुरे हमें मनाबा लिंदो बरसात के मौसम में इतना अच्छा गाना, जुम्मे को मजबूर कर रहा है। थैंक यू मैम, ओके थैंक यू सो मच सुनने के लिए, ठीक है, और सुनते जाइए, सुनते रहिएगा। यहाँ ले दिन पुया फाना का भी मिले है, इन्होंने लिखा है, आज ये प्ले ले तुर्खा नाम माता ले रहा हूँ आज जोंगसोंग तान ले, आज जोंगसोंग तान ले कठियान बेंग शंग शंगा मीते दार लोना कपूते जों कपूते जोंगसोंग तान रुंती आ ले दिन पुया फल कुन बेंग लाइफ एम आई साम ए मेम तो रुंती ने। तो चलिए अगले गीत की ओर चलते हैं। ये जीना सिर्फ मेरे लिए मूवी का टाइटल ट्रैक सॉन्ग है और ये गीत हम स्पेशली मीनार अहमद और उनके दोस्तों के लिए डेडिकेट करते हैं, और साथ ही दिन पुया फल कौन देंगे लाया मीता।

आप सभी जीना सिर्फ मेरे लिए मूवी का टाइटल ट्रैक सॉन्ग सुन रहे हैं और यहाँ मैसेज हमें मिला है जेल अरेंजे से और इन्होंने लिखा है जेल अरेंजे यानी आर जे नेक्स्ट सॉन्ग का क्या पैसेंजर थे खुरु लियान ख्वा सांग ते तितान ख्यान कदम थम वे और ये रेंग माई और हम सुनेंगे वारिस मूवी का गीत ये है मेरे प्यार की उम्र को इतनी सनम और दोस्तों ये आज इस खंड का आखिरी गीत होगा क्योंकि आप सभी फिर 6:30 बजे से स्थानीय समाचार सुनने वाले हैं हम वापस लौटेंगे 8:30 बजे ठीक है हमारा इंतज़ार करते रहना और माँ फाल का भी मैसेज आया है जाने से पहले फिर पढ़ लेते हैं अजय मिस नमस्ते नमस्ते नमस्ते कफनसिया का लोलूत नाले प्रे मोर बोंगो नेक्स का सांग के इतान दे इतान रुन दिया लो बोंगलो तुम लोग अच्छा चर चर दोनिया तो चलिए सुनते हैं मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम

आप सभी तमाशा मूवी का गीत सुन रहे हैं अगर तुम साथ हो। और यहाँ हितेंद्र दास जी का भी हमें मैसेज मिला है। गुड इवनिंग आज जी, नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार।

प्यार के पल आप सभी के की आवाज में सुन रहे हैं। और यहाँ ललन प्रिय फलकोन से मैसेज मिला है, इन्होंने लिखा है आरजे प्ले ले तो खाना माता ले रो आज अभी जो सोंग तान ले आरजे जो सोंग तान ले कच्छन दिव्य शंक शंगमी ते तान में मोई ते तान ले के वाल तुई कॉल अमी तान पा पारिपू कुंग ते तान रोंटी ने ललन प्रिय फलकोन हियानी। तो अगले गीत की ओर चलते हैं। ये राजना मूवी का गीत है, नजर लाएं।

से शरीफगंज से, और इन्होंने लिखा है, हाय आरजे जी, हेलो हेलो, मेरी जुबान पर नाम तुम्हारा है, दिल में ख्याल तुम्हारा है, मैं लिख दूं तो अल्फाज तुम्हारे हैं, जरूरत पड़े तो याद कर लेना हमें, क्योंकि हम यार तुम्हारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लिखा है आपने, और भी लिखते जाएं और भी भेजें, हम पढ़ेंगे, ठीक है। कि बहुत बहुत धन्यवाद मिनाल अहमद, और चलिए अगली

जाने ये क्या हुआ, कार्तिक कौन है, कार्तिक मूवी का गीत है। और मीना जी आपने जो ये यहाँ रिक्वेस्ट किया है ये हमारे लिस्ट में नहीं है, ठीक है, हमें माफ कर दीजिएगा, वेरी सॉरी। एनीवेज जो अगला गीत हम सुनेंगे ये खामोशिया मूवी का टाइटल ट्रैक सॉन्ग है, और हम फिर वापस लौटेंगे 10 बजे, ठीक है, हमारा इंतजार करते रहना। और अगले कार्यक्रम के लिए आपका साथ देने के लिए आपके आरजे जो दिन आएंगे, ठीक है, तो चलिए सुनते हैं।

FM Zoho 100.7 पर आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजे मासूम क्लोंगी। आपने अभी आरजे रिंकू के साथ अपना वक्त बिताया था और अब हमारे साथ आधे घंटे के लिए हिंदी फिल्मी गीत सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए और आशा करते हैं कि आप हमारा साथ कार्यक्रम के अंत तक देते रहेंगे। 10:30 बजे तक का होगा, तो चलिए शुरू करते हैं इस खंड को रंग दे बसंती मूवी के साथ, और ये है

तुम हो रॉकस्टार मूवी का गीत है जॉन अगस्त बॉय का इला रॉन रिक्वेस्ट का कंसोंगा प्लीज ताया का मुझे लो मिलो शेतियाम शान दुनिया ओ मैं चाहिए तो ही तान के तलादंगा और ये दो पत्ती मूवी का गीत है और ये है रांझन और ये गीत आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं के लिए भी हम डेडिकेट करना चाहेंगे ठीक है तो चलिए सुनते हैं

राजन दो पत्ती मूवी का गीत है और हालांकि जो हम सुनने वाले ये पुकार मूवी से है, सुनता है मेरा खुदा, और ये गीत हम खास करके पीसी रोत्सा हसीपुर बेंगलुरु के लिए

लगता है मेरा खुदा पुकार मूवी का गीत है। दोस्तों अब हमारे जाने का समय आ गया है क्योंकि हमारा 10:30 बजे तक का है और अगला गीत आखिरी गीत जो हम आप सभी को सुनाने वाले हैं ये तो होना प्यार है मूवी से है ना तुम जानो ना हम। और ये गीत हम आप सभी के लिए डेडिकेट करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा ठीक है। फिल्म सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि।